चीजें नहीं। सुदामे का नाम सुनिया ही भगवान ने अपने तखत को चाल मारी। तो यहां आ गए, कहने लगे हो भगवान मेरा मित्र सुदामा, मेरा प्यारा सुदामा भगवान कृष्ण जी पद्धे हैं। पहुंचे जिथे सुदामा खड़ा है, जाके की कीता दूरों देख अयोध्या जी ने, दूरों देख दंडौत कर दंडौता कर दंडौत जान दे एक तो होते ना पर मत्था टेक ले, एक है दंडौत, दंडौत हो गया सारा श्री लम्मा पाठ परोस कर दिए दंडौत बंधन अनुभव अंधवारे हो कितने कितने उसे प्रेम यानी खास दिन जो दूर हो गया के दंडौत कर सारा श्री पूजा करके दो मिनट जोड़ के एक गुरु के नमस्कार भगवान कृष्ण जी सुदामे भी अगे जाके पहला दंडौत की दोनों देख दंडौत कार्य भाई साहब भी लिखते हैं ना

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहेगुरु अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत

तुक है बोलो सच नाम करतार। पहला शब्द डॉक्टर जगजीत सिंह जी पासो, श्रवण करो, लोगा परम ना भूलो पाई।

मोहम्मद बिन तुगलक ने नामदेव नु पुछया, ऐ नामदेव, मैं हिंदुस्तान दा बादशाह, तू मेरे को डरदा नहीं? किदे भरोसे ते

सराय चा बड़ा वड़ा शामियाना है तंबू है केड़ा ऐ बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लुआना है।

सरायचा है, तंबू है, इंसान जहाजा ते चढ़ लवे, राकटा ते चढ़ लवे, कितना भी यतन कर लवे, पर इस परमेश्वर दे तंबू विचू इंसान बाहर नहीं निकल सकता। ओदे घर विच बैकुंठ है, अते सपत लोक समान पूरी आले, ए जड़े पताल ने ए ओदे घर विच

बहुत है। उस गोपाल राय दे कार खेड कर दिए, कदी किसे नु मार देंदी है, कदी किसे नु मार देंदी। इस करके ओ जिड़ा मेरा गोपाल राय है, जिदे कार सूरज चंद्रमा दीवे तरह ने, मौत जिड़ी है ओ दे कार

मोहम्मद बिन तुगलक ने भगत नामदेव की सोभा सुन के नामदेव नु अपने दरबार च बुलाया ते बादशाह कहन लगा, ऐ नामदेव मैं सुने अल्लाह तेरा यार है।

रामदेव ने बाणी च बयान कीता कि बादशाह कहन लगा है नामदेव ऐ गां मरी हुई पई है इस नु जिंदा कर दे जे गां जिंदा ना हुई ता मैं तेनु जानो मार देंगा। नामदेव जी बादशाह दे ख्याल ते अपनी विचार शब्द विच

महादेव नू बन लिया ते बादशाह कहन लगा देखूं तेरा हर बीठल ए नामदेव दस मैनू तेरा बीठल तेरा भगवान कित्थे।

कैद खाने पा दिता गया, सत घड़ियां दा समां दिता, पर सत घड़ियां बीत गई हैं। गऊ हाली तक जिंदा नहीं हुई, भगत जी आप बयान करते हैं।

का नाम देव जी ने किया ऐ परमेश्वर, और कुछ ना कर बस गां जिंदा कर दे। परमेश्वर ने कृपा की थी ते मरी हुई गां जिंदा हो गई, वच्छे समेत ते नाले दूध दियां दो मटकियां भी भर गई।

दोवे मटकियां बादशाह दे अगे धरियां बादशाह महलां विच है भगत नूं दुख दिता सी हुण परमेश्वर ने राजे नूं बादशाह नूं दुख दिता ऐसा दर्द उठिया कि जिदा इलाज कोई नहीं।

बादशाह ने खुश होके भगत नामदेव ने बहुत सारा सोना चांदी भेंट किया, पर नामदेव जी ने वो सारा सोना चांदी गरीबा च वंड दिता। आप तुर पे बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो, सेज कह लो, बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारियां नूं दित्ती। बादशाह ने दरबारियां नूं कहा, जिथे नामदेव जी बैठन इसे जा नामदेव नूं भेट कर देनी, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि इसे जा किसे नूं दान नहीं करनी, ए वछा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पए, नाल बादशाह दे दरबारी तुर पए। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने, दरबारियां ने अपनी कीमती सेजा नामदेव दे अगे धरी ते बेनती कीती, बादशाह बादशाह सलामत दी ए इच्छा है, ए कीमती सेजा तुसा आप वर्तनी है, संभाल के रखनी। नामदेव जी ने ओ कीमती सेजा चुकी ते नदी विच सुट दिती। दरबारी वापस चले गए, बादशाह नूं बेनती कीती, बादशाह भगत जी ने तुहाडी सेजा पानी विच सुट दिती। बादशाह नूं बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, पर कर कुछ नहीं सी सकदा दरबारियां दे नाल। फिर बादशाह उस नदी किनारे भगत नामदेव दे कोल आया ते कहन लगा, भगत जी मैं बड़ी श्रद्धा नाल सेजा दिती सी, तुसा नदी विच सुट दिती। नामदेव जी कहन लगिया, बादशाह तू संभालण वास्ते कहा सी, असी तेरी सेजा पानी विच संभाल दिती। बादशाह कहन लगा, महाराज जे संभाली है ता मैनू एक वारी दिखा दियो ताकि मैनू तसली हो जावे। उस वक्त भगत नामदेव जी कहन लगे, चंगा फिर बादशाह अपनी सेजा देखनी है ता पानी दियां लहरां वाल तक, जदू तेरी सेजा आवे ता पहचान लवे। बादशाह पानी दियां लहरां वाल तकन लग पिया।

भगत नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान ता कृष्ण भगवान दी प्राप्ति हो जाती। अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर तू पार हो जाता।

पर जे गुरु दयाल हो जाए देहुरा फिरे देवरा कहते मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा नामदेव नूं जदों पंडता ने नीवी जायदाद समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा

बादशाह ने पूछया, भगत जी एक सेज ता मेरी है, ए बाकी सेजा कीमती किस दिया ने? ता नामदेव जी कहन लगे, बादशाह जदों कोई परमेश्वर दे नाम ते अपनी कमाई विचों कोई चीज दान करदा है, पेट करदा है दसां नूं आंदी फिरत विचों, ता ओह दान कई गुणा फल के उन्हों मिलदा है। ए सारियां सेजां तैनू मिलनियां सन, पर तू दान करके शंका कीता, इस करके ए चीजां हुण तैनू नहीं मिलनियां। ता बादशाह उस वक्त हाथ जोड़ के कहन लगा, भगत जी मैं भी बादशाह हिंदुस्तान दा, सारे लोग मेरे को डरदे ने पर तुसी नहीं डरदे। उस वक्त भगत नामदेव जी ने मलार राग दे विच ए शब्द उचारिया, सेवी ले गोपाल राय अकुल निरंजन। है बादशाह तू दुनिया दा बादशाह अज है, कल खत्म हो जाएगा, पर जिहड़ा साडा बादशाह है ओ परमेश्वर, ओ गोपाल, ओ कदी खत्म नहीं हुंदा, उन्नू कदी मौत नहीं आंदी। उसने दुनिया बनाई, खंड ब्रह्मंड बनाए ने,

0: और
1: उस परमेश्वर दे घर की है। भगत जी ने बयान कीता जांचे कर निकट वर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अमरीक नारद नेजे सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला एते जी जांचे है करी सर्व व्यापक अंतर अरे प्रणवे नाम दियो तांची आन सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह ओ परमेश्वर इतना बयांत है ए जो मैं दसे है ए ता कुछ भी नहीं सब कुछ होदा ओ बनान वाला है प्रणवे नाम दियो तांची आन। नामदेव आखद है ऐसे गोपाल राजे दी असी शरण विच हां ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लैंदी है। इस करके भाई राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो क्योंकि उस गोपाल राय तों कोई भी वड्डा नहीं।

रूप रूड़ो अतरंग रूड़ो मेरो रामैया रूड़ो कहंदे ने सोना ऐ परमेश्वर तेरा नाम बड़ा सोना है रूप रूड़ो तेरा रूप बड़ा सोना है अतरंग रूड़ो बहुत ही सोना ते प्यारा मेरा

चले गए। प्यास लगी, पानी दी पाल की थी, एक खूह नजर आया। उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन, क्योंकि पानी बहुत नीवा सी। खूह दे विचों ओह पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल। पानी देखिया बहुत डूंगा है, बहुत नीवा है। पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंचे हुए महापुरुष सन, अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे, पानी पीता। पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए, चेलियां नू पियाया, कुछ लोकां नू भी पियाया ते नामदेव नू कहा, नामदेव तू भी पानी पी ले। नामदेव जी कहन लगे, मैं पानी नहीं पीना जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे, फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है, तू भी भगत है, तेरे विच भी शक्ति है, तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू, मैं पानी ता पीना जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे, नहीं ता मैं पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा है कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उस खूह दे कोल बैठ गए, हाथ विच खड़ताला।

कुरंक हिरण्यों के नाद आवाज एक कंड हेड़ा होंदे ओदी आवाज सुन के हिरण जेड़ा है उस आवाज दे पीछे भजदा है वो आवाज नाल प्यार करदा है। ऐ परमेश्वर जिस तरह मारवाड़ दे लोक पानी नाल प्रीत करदे ने ओठ वेला नाल प्यार करदा है कुरंक हिरण जेड़ा है कंडेड़े दी आवाज नाल प्यार करदा है ऐसे

तरफीनों के इंद्र बरसात जिस तरह धरती बरसात नाल प्यार करती बरसात पवे ता धरती खिल उठदी कुसम फुल नू के बास खुशबू जिस तरह फुल दे नाल पवर

जिस तरह तू है इसे तरह इस नामे दे मानवे च भी ए परमेश्वर तू है कहें ए नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार कर दे जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होने।

अधी रात करो उठे गंगा घाट जा पहुंचे जिड़िया पौड़िया तो स्वामी रामानंद उतरिया करते सन कबीर साहब मुंह सिर लवेट के उन्हां पौड़िया ते जाके लम्मे पै गए। इस कथा नूं भाई गुरुदास जी ने अपनी पौड़ी दे विच बयान कीता है। आप स्वामी रामानंद बारे इउं अपनी पौड़ी विच लिखदे हन।

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावण ताईं स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करन वास्ते

स्वामी जी आए अमृत वेले, बड़ी मस्ती विच राम राम कर दे तुरे आ रहे ने। गंगा दिया पौड़िया उतरन लगे, देखे आ पौड़िया दे विचकार कोई सुता होया। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू। ते कहंदे ने भांडे विच जेड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जेड़े महापुरुष ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू, ते नाले के उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे ने।

ऐसा असर हो गया। स्वामी रामानंद पैर लगा के ए कहन दा के उठ राम के राम को, भाई गुरुदास जी कहंदे ने राम कबीरे भेद ना पाई, राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद दे आश्रम वाल तुर पए। स्वामी रामानंद जदों इशनान करके जांदे सन, दरवाजा ढो के चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नूं इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके, कपड़े भी पवाए, सिर ते ताज भी रखे, मुकट कलगी भी रखी, पर हार पाना भुल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद दे दरवाजे दे बाहर बैठे। उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकट रख बैठे, ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं, हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी, जे ता हार मुकट ला के पावा ताई सोभा वाली गल नहीं, मुकट दे उत्तु हार पै नहीं सकदा क्योंकि हार छोटा है। ते चिंता विच नहीं कि सिर ते सजाया मुकट लाना ठीक नहीं, ते मुकट दे उत्तु हार पै नहीं सकदा किवें करा। ता कबीर साहब बाहर बैठे सन, उन्ना जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने, क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्ना विच ते परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा, ओ एक दूसरे दे मना दियां जानदे ने। ते कबीर साहब ने बाहरों कहा, स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा, ते हार दी गंढ खोल के हार गल विच पा के फिर गंढ मार दे। आवाज सुनी स्वामी रामानंद बड़े हैरान होए, उठ के बुआ खोलिया, बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे तू कौन है? कबीर साहब कहन लगे मैं कबीर हां, तुसा मैनू गुरु दीख्या दीती। स्वामी जी कहन लगे मैं ता तेनू गुरु दीख्या दीती नहीं, अपना चेला बनाया नहीं। ता कबीर साहब कहन लगे स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए, मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी, तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम को, उदों दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे कबीर तू सेवक नहीं, तू ते मेरे नालों भी अगे चला गया है, तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान ली है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, कत जाइए रे कर लागो रंग। ऐसा असर होया गुरु दे मिलन दा के कबीर विच ते राम विच कोई फर्क ना रहा।

गावा चारण जांदा है, रस्ते विच एक मंदिर है, तन्ना देखदा है कि ब्राह्मण रोज पत्थर दिया मूर्तियां नु इशनान करा के उन्हां दी पूजा करदा है, तन्ना ए रोज देखदा है।

ब्राह्मण कहन लगा जाओ तो नहीं है कोई मखौल है ठाकर तेनू दे दिया तेनू की पता कि मैं पूजा करी दी जा के गवां चार तन्ना कहन लगा देख पंडता सीधी तरह ठाकुर दे दे नहीं ता मैं दूसरी तरह लवांगा ब्राह्मण कहन लगा जाट है इन्हें पिछा नहीं छड़ना कहन लगा चंगा तो ठहर मैं ठाकुर लेके आना एक गोल मोल पत्थर कपड़े विच लपेट के तन्ने नूं दिता अपना पिछा छड़ाण वास्ते पत्थर एक लपेट कर दे तन्ने नूं गैल चुड़ावे गैल अपना पिछा छुड़ाया ते लै ठाकुर नूं लै जा हुण तन्ना उस पत्थर नूं घर लै आया पहला इशनान कीता फिर ठाकुर नूं इशनान कराया चौंकी ते रखिया रोटी पकाई अते लस्सी रिड़की लस्सी रोटियां ठाकुर दे अगे रख के ते तन्ना हाथ जोड़ के बैठ गया ठाकुर नूं

पर तन्ना हाथ जोड़दा मिन्नता करदा मत्थे टेकदा कहिंदा ऐ परमेश्वर मैं अनपढ़ा मैनू ए नहीं पता तेरी अरदास किवें करी दी पर मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करना कृपा कर ऐ रोटी खा हुण तन्ने नू की पता के लोग ठाकरां नाल भी ठगी करदे थोड़ी जी चीज पुजारी मूर्ति दे मुंह नू लगांदा है अधी आप रख लैंदा है अधी घर वाले ले जांदे तन्ना ए समझदा के पत्थर दियां मूर्तियां सब कुछ खांदियां ने सब कुछ पींदियां ने।

तीसरा दिन चढ़िया ते तन्ना कह लगा हौ भी मुंह ना जुठाल सा तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे ऐ परमेश्वर जे तेरा धर्म है के पंडतां दे हत्थों खाना ते मैं भी जाटना फिर मेरी भी जिद है कि जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी कुछ नहीं खाना तू मेरे नाल नरा

0: परमेश्वर नु रोटी खवाई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तो असी खा ली हुण दस तेन चाहिदा की है। तू याद कीता मैं आया हुण मंग तेन की चाहिदा। ता तन्ने ने हाथ जोड़ ले कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दीए। लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना। आप जी बयान करदे ने भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप
1: गोपाल तेरा आरता।
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला परमेश्वर।

पोड़ी नुके ऐ भगवान पैरी सोहनी जुती पाई होवे सोहना सूट पाया होवे घर विच अनाज भी होवे गां ते मझ भी होवे ते किधरे आना जाना पै जावे ते पैदल तुर के जांदा फिर आदमी।

इस करके कृपा कर एक ताजन तुरी चंगेरी एक सोनी जी घोड़ी भी दे ताकि किधरे आना जाना होवे ता ओ सफर मैं

मर्यादा पूरी हो गई। हुण तक महाराज गुरु बने रहे ते हुण आप जी दी वारी सिख बनन दी सी। आप बड़ी निम्रता नाल बोले, हे अकाल पुरख दे खालसा जीओ, तुसा सारी दुनिया नू अमृत दी दात बख्शनी है। सब तो पहला दास नू भी अमृत दी दात बख्श के गोविंद राय तो गोविंद सिंह बना लवो। भाई दया सिंह जी ने कहा, महाराज अमृत लेना है ता इसका मुल भी देना पवेगा। असा सिर दे के अमृत प्राप्त कीता है, दसो आप इस बदले की दोगे। हजूर ने सिर झुका के कहा, प्यारे भाई दया सिंह जी, जे सिखा ने अमृत बदले सिर दिता है ता सिखा दा गुरु इस बदले सरबंस देवेगा।

0: गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके पंजा प्यारियां नूं छकाया, उपरंत आप छकिया अते खालसा पंथ दी सिरजना करके सानू एक वखरा ही स्वरूप दे दिता, ताके सिख लखां विच कल्ला खड़ा होया भी दूरों ही नजर आवे। इसे करके अज असी बड़े मान नाल एक कह रहे हां, साडा मुंह मुहांदरा वखरा है, साडा रूप वखरा, साडा रंग वखरा, किसे कौम दे नाल नहीं मेल खांदा, तुरिया आउंदा है साडा
1: पर संग वखरा,
0: साडी आत्मा दे लक्षण वखरे ने, साडे जिस्म दा हर एक अंग वखरा, साडी मौत जहान तो वखरी है, साडा जिंदगी जीवण दा
1: ढंग वखरा।
0: गुरु प्यारी साध संगत जी, अकाल अकैडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दियां बीबियां दे ढाडी जथे दी इन्नी सेवा प्रवान करो, बुलाओ फतेह ते आखो गज के वाह।

0: गुरु साहिबां दी साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ आओ रसना पवित्र करिए पातशाह दी बख्शी फतेह दी सांझ करो ते सारे गज वज के आखो जी
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: बाबर बादशाह दी करड़ी कैद अंदर गुरु नानक ने पीसियां चकियां सन तत्ती तवी ते बैठ के गुरु अर्जन नीहा कौम दिया कीतियां
1: पक्कियां सन।
0: मीरी पीरी दे मालक पातशाह ने जुलम राज दिया उड़ाइयां फकियां सन तेग बहादुर हिंद दी बन चादर पत्ता लहदियां अनेकां
1: ढकियां सन।
0: जदों सारियां हिलियां तो गल लंगी तेगा गुरु गोबिंद ने
1: चुकियां सन।
0: प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मोहम्मद लतीफ लिखता है The death of Guru Arjan is a great turning point in the history of the Sikhs. Pav, Guru Arjan Dev Ji di shahadat, Sikh itihas vich bada vada mod sabit hoi. Pancham Patshah, Guru Arjan Dev Ji di shahadat to baad, 11 saal di umar, chardi jawani sheme Patshah, Guru Har Gobind Ji Maharaj, Guru Gaddi utte baithe. Pai Gurdas Ji likhde han, पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरुपारी अर्जन काया पलट के मूरत हरगो बिंद सवारी चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी दल पंजन गुर सूरमा बड़ योदा
1: बहु पर पुकारी।
0: गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा योदियो चंगे शस्त्र घोड़े अते जवानियां भेट करो। अमृतसर साहिब इलाही फौजी छावनी विच बदल गया। 1609 ईस्वी विच गुरु पातशाह ने अकाल तख्त दी सिरजना कीती। साहिबा ने कहा एक ढाडी जथा मंगवाया जावे। भाई विधि चंद जी नथे अते अब्दुल्ले दे ढाडी जथे नूं लेके आए। जदों नथे ने फेरिया संगी ते गज ते अब्दुल्ले ने मारिया ढड ते हथ तां सूरमियां दे डौले फर्क ला दिते। फिर जदों लगियां तोंसियां ते चोटां तां पंजाब दी सर जमीन गूंज उठी। गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने मीरी ते पीरी भगती ते राज शक्ति माला ते खंडा जोश ते होश शांति ते क्रांति बाणी ते कुर्बानी सब एक प्लेटफार्म ते इकट्ठियां खेप

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे हैं। ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलती हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने। पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दियां मंगां। पर हे परमात्मा, तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगा कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की है।

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ा, हां मंगना चाहिए, पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पैक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे, कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई स्त्री मंग रहे है। हे परमात्मा जिन्ने मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगा, हर कोई मंग अलग अलग कर रहे है, पर सब दियां मंगा तू पूरी करी जा रही। मान मांगो, मान इसलिए मंगया

निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नू गरीब नू कोई आदर नहीं दिंदा, इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो तान मांगो तन लक्ष्मी सुत दे, परमात्मा दे तन होवे लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत धन्ना जी कहिंदे ने घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी होनी चाहिए।

मंगी जाए। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कभी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जेड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा है ना, दिन विंदा है ना रात विंदा है, वो पुकारा करी जांदा है। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना है? कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रहे हैं। मंगती का पहला गुण है जी, कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हैं, तालाब हैं, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे? बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,

कह रहे हैं नहीं है, चला जा। कहना नहीं कुछ ते दे के तोर, कुछ ते मेरी चोली पा, मैं तेरे को लाए बगैर नहीं जाना। इना टीठ बन दे कई बार मालिक किनिया गल्लां कर दे, देन वाला बहुत गल्लां कर दे पर वो बर्दाश्त करे, हर गल नू सुने, क्योंकि टीठ बन दे। जब तक टीठ नहीं बनता तद तक दात नहीं मिलनी। पावो दान टीठ होए मन, टीठ बन के मंगी जा मंगी जा मंगी जा। हुण गल आ गई तीसरे गुण दी। तीसरा गुण है जी मंगता डर ना छड़े। किवें ताटी दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े। दर फड़ के बह जाए ते दर ना छड़े। हे मालक मंग रहे टीठ बन गए, दर नहीं छड़ना, दात लैके जान। पर हुंदा की है, असी सिर्फ मंगना ते जान लेने हैं, मंगना आउंदा नहीं। मंगना की है ए भी पता नहीं, मंगना किवें है ए भी नहीं जानते। ते जिहड़े मंगते दे गुण ने ओ ते साडे अंदर है ही कोई नहीं। जे होवे च किसी अंदर एक आ जांदा है, लो जी मंगना है, मंगी जांदा है। कुछ समा मंगिया नहीं मलिया चला गया। किसे विच दूजा गुण आ जांदा है, टीठ बन के बह जांदा है। इतना टीठ बन गया कि मंगी जा रहे हैं नहीं मिले, आओ भी चला गया। तीसरा गुण सी ग्रहण नहीं करते कि जेड़ा बड़ा जरूरी है। तीसरा गुण है मंगता दर ना छड़े, क्योंकि कई बार हुंदा कि असी मंगी जाने हैं टीठ भी बन जाने हैं, जो दात लैण दा समा आउंदा उदो असी दर छड़ के चले जाने, बस उदो सानू ओ दात नहीं मिलदी। ताडी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े, दर नहीं छड़ के जाना भावें कुछ हो जाए। साहब कहिंदे ना आखर विच